0: से लगातार नेतन्याहू जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार ये इस बात पर जोर देते रहे कि उनके कद का कोई नेता इसराइल में नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और दूसरी जो अहम बात वो बार बार अपने प्रचार में कहते हैं वो ये है कि अगर जरूरत पड़े तो वो अमरीकी जो नेतृत्व है उसके खिलाफ भी खड़ा होने को तैयार है।
1: लेकिन आपको याद होगा युद्ध में अमेरिका और इसराइल साथ गए थे ईरान के खिलाफ, लेकिन जब सीज फायर की बात हुई तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ने बात की। गाजा की लड़ाई भी गाजा हमास और नेतन्याहू के इसराइल के बीच थी, लेकिन वहां भी पीस प्लान ट्रंप लेकर गए हैं जो ये मान नहीं रहे हैं। क्या रास्ते अलग अलग हो गए हैं अब दोनों के पूरी तरह?
0: देखिए, ट्रंप ने भी इनके बयान के जवाब में जो है एक इसराइली पत्रकार को कहा है कि वो इसको लेकर के, इसको बहुत ज्यादा लेकर के वो परेशान नहीं है, उन्हें हैरानी नहीं हुई है। और ट्रंप ही के तरफ से ही ये कहा गया है यहाँ के एक पत्रकार को कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो साफ तौर पर दबाव में नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक, और जिस तरह उन्हें चुनाव का सामना करना है तो उनके लिए काफी मुश्किल होने जा रहा है ये चुनाव। और वैसे भी जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं जिस तरह के सर्वेज यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी पार्टी पिछड़ती भी नजर आ रही है।
1: और एक तरफ गजा पर टेंशन बरकरार है, दूसरी तरफ हॉर्मूज के रास्ते जहाजों की आवाजाही बहाल होने की उम्मीद जगी है। लेकिन अब भी ईरान की अमेरिका के सामने कुछ शर्तें हैं। इस बीच ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। मोहसिन रजाई पहले कह चुके हैं कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल बनाए रखना बेहद जरूरी है। वहीं महीनों से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने के बाद अब अमेरिका दोबारा ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने की बात कह रहा है। रविवार को न्यूज वेबसाइट एक्सेस को दिए हुए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि आर्थिक तौर पर ईरान की बहुत बुरी हालत है, जबकि इसके एक हफ्ते पहले ट्रंप ईरान को डील करने के लिए आखिरी वार्निंग दे चुके थे। मैंने वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा से यह भी जानना चाहा कि अमेरिका की इस बदलती स्ट्रैटेजी के मायने क्या है, क्या अमेरिका ईरान के सामने निगोसिएशंस में कमजोर पड़ा है?
0: जी, तो अमरीकी राष्ट्रपति हैं, उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब वो इस युद्ध को दूसरी तरह से देख रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है और हॉर्मूज पर जिस तरह से वो अपना नियंत्रण बनाने में नाकाम रहे हैं उसकी वजह से भी वो शायद अपना स्टैंड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहे हैं। लेकिन अमरीकी कई अधिकारियों की तरफ से और यहाँ भी बहुत सारे अधिकारियों से मुझे जो बात सुनने को मिल रही है वो ये है कि जिस तरह का नेवल ब्लॉकेड अभी दिख रहा है और खास करके पिछले 9-10 दिनों के दौरान जिस तरह से अमरीकी नेवल ब्लॉकेड जो परिणाम सामने आए हैं उसके मुताबिक ईरान अपने तेल को बाहर निकालने में पूरी तरह से असफल रहा है और उस पर आर्थिक जो है दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की बात यहां भी कही जा रही है, कुछ अमरीकी अधिकारियों की तरफ से भी इस तरह का बयान दिया गया है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि शायद रणनीति जो है अमरीका की वो बदलती हुई नजर आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आर्थिक दबाव जो है वो ज्यादा कारगर साबित हो रहा है सैन्य दबाव से।
1: और खबर रूस और यूक्रेन जंग की। रूसी अधिकारियों का कहना है कि तातरस्तान में हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में करीब 40 लोग घायल हुए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इस अटैक में सिविलियन और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसे टेनको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जिससे वहां आग फैल गई। यूक्रेन आजोव सागर में मौजूद जहाजों पर भी हमले कर रहा है ताकि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया तक होने वाली सभी सप्लाई को रोका जा सके। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स को ब्लैक सी में यूक्रेन की नौसेना तक पहुंचने की खास इजाजत मिली, लेकिन इस शर्त पर कि वो एग्जैक्ट लोकेशन का खुलासा नहीं करेंगे।
2: हम यूक्रेनी नौसेना के साथ समंदर में पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं जहां रूसी हमलों की वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार खतरे से घिरी इस यूनिट के साथ वक्त बिताने का हमें रेयर मौका मिला है। ये देश का ऐसा हिस्सा है जहां बिना चेतावनी के ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल आ सकती हैं। हर कोई चौकन्ना है, पूरी तरह सतर्क। यहाँ ये हर दिन गोलियां चलाते हैं। आज सुबह सब शांत लग रहा है लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। इस जहाज पर लगी बंदूकें, जाल और दूसरे उपकरण इसे काफी हद तक अपनी हिफाजत करने में मदद करते हैं, लेकिन ये रूस को यूक्रेन के बंदरगाहों से आने जाने वाले सिविलियन जहाजों पर हमला करने से नहीं रोक सकता। ऐसे हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या बन गई है। समंदर में भी जंग जारी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पिछले एक महीने से हमलों की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
3: हर दिन हम जहाजों को क्रू से बचाते हैं और अपनी तरफ से हर वो कोशिश करते हैं जिनसे ये हमले कम हो जाएं और थम जाएं।
2: यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक है। जंग से पहले जब ये तस्वीरें ली गई थी तब ओडेसा के बंदरगाहों से दुनिया के कई हिस्सों में अनाज जाता था।

0: यूक्रेन के अनाज निर्यातक अब चिंतित हैं। गर्मियों की फसल की कटाई जोरों पर है और ऐसे में रूस के ये हमले बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं।
1: मैं कहना चाहूंगा कि हम पहले ही करीब 5 से 7 लाख मेट्रिक टन यूक्रेनी अनाज और ऑयल सीज दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की अपनी क्षमता खो चुके हैं।
0: समंदर में जंग तेज होती जा रही है। कुछ हमले यहां से दूर समंदर में हो रहे हैं तो कुछ इसी तट के पास। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत यहां रहने और काम करने वाले लोग चुका रहे हैं, जिनके लिए जिंदगी लगातार खतरनाक होती जा रही है। स्वेतलाना ओडेसा पोर्ट पर काम करती हैं। पिछले एक साल से उन्हें चलने में तकलीफ है। ये तब से है जब पास में एक रूसी मिसाइल से धमाका हुआ था जिसमें उनके 2 साथी मारे गए थे।
2: हालात बहुत मुश्किल है। लगातार सायरन बजते हैं, ड्रोन से हमले होते हैं और हौसला बनाए रखना तो और भी मुश्किल है। लोग बहुत तनाव में हैं। मैं क्या कहूँ, मेरे हाथों को ही देख लीजिए।
0: खतरों के बावजूद ओडेसा में गर्मी का मौसम कुछ ऐसा है। यूक्रेन के लोग बड़ी संख्या में बीच पर आए हैं। ज्यादातर लोग सायरन को नजरअंदाज करते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जब एक रूसी ड्रोन बहकर समुद्र तट पर आ गया तब भी लोगों ने खास ध्यान नहीं दिया। उसी दिन ब्लैक सी के दूसरी ओर एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया और उसका मलबा समुद्र तट पर गिरा, जिससे 7 रूसी नागरिकों की मौत हो गई। ओडेसा के पास हम उस जगह जा रहे हैं जहां कुछ देर पहले धमाके की आवाज सुनाई दी थी। वहां हमें 83 साल के आंद्रे डुडेक मिले, जिनका घर और बगीचा धमाके से तबाह हो चुका है। सिर्फ 5 घंटे पहले जेट इंजन से चलने वाले एक ड्रोन के धमाके से उनकी नींद खुल गई। वो किसी तरह बच निकले और उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई। क्या आपको लगता है कि पोर्ट्स पर रूसी हमलों से आप बेवजह ही निशाना बन रहे हैं? बिल्कुल, वो कहते हैं कि वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। जहाजों और पोर्ट्स पर छिड़ी इस जंग की चपेट में कई बेगुनाह लोग, सेलर्स, पोर्ट्स के कर्मचारी और वो लोग हैं जो बदकिस्मती से पास में रहते या काम करते हैं। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट।
3: और चीन में लगभग 10 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। वजह है तूफान डॉल्फिन। जैसे पूर्वी चीन में भारी बारिश हुई है, बाढ़ आ गई है और शंघाई की सड़कों पर तो पानी भर गया है। रविवार को आया डॉल्फिन टाइफून अब कमजोर होकर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल गया है, लेकिन इससे अब भी बड़े पैमाने पर मुश्किलें हो रही हैं। शंघाई की सड़कों पर पानी भरा है और 1000 उड़ानें रद्द हुई हैं। जैसे जैसे यह तूफान जमीन के करीब आता जा रहा है, अधिकारी इसे लेकर और भी ज्यादा भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के खतरे को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। और इस पर चीन के बीजिंग से बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
1: चीन के वैज्ञानिक लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफानों के और ज्यादा खतरनाक होने और उसके खतरे के बारे में चेतावनी देते रहे हैं, और आप जानते हैं हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इंजीनियर्स को डैम के स्ट्रक्चर की जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो अभी भी मजबूत हैं या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले तूफान की वजह से बहुत गंभीर बाढ़ आई थी जिससे कई बार डैम टूट गए। लेकिन असल में सरकार को खतरे के लगातार बने रहने की चिंता है क्योंकि चीन के बड़े इलाकों में हर तरफ से वार्निंग मिल रही है, इसलिए इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों के मोबाइल फोन पर कई तरह की वार्निंग्स भेजी गई हैं ताकि वो सावधान रहें, क्योंकि ये गंभीर और खतरनाक मौसम इस हफ्ते कई दिनों तक जारी रह सकता है।
3: और कनाडा में भी लगभग 20,000 लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। वजह, वाइल्ड फायर। आपको याद होगा अभी हाल ही में फ्रांस और स्पेन के जंगलों में आग लगी थी और अब कनाडा में भी हालात यही हैं। हालात तो ये हैं कि वहां के पश्चिमी हिस्से में लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो सबसे खराब हाल के लिए तैयार रहे क्योंकि जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। शुक्रवार से अब तक ये 2 गुने एरिया में फैल चुकी है और तेजी से फैल रही है आग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भी लगी है। दक्षिणी इलाके का समरलैंड सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। यहां के 12,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुल पूरे प्रांत में 20,000 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। पुलिस के मुताबिक आग से बचने की कोशिश में 80 साल की एक महिला की मौत हो गई।

0: और वैंकोवर में मौजूद पत्रकार एंजेलिना रवेली इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही है।
1: अभी सबसे बड़ी चिंता है आग, जो 13,000 हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में फैल चुकी है। ये ब्रिटिश कोलंबिया के ओकानागन रीजन में है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। ये एरिया काफी मशहूर है, जहां पर लोग अक्सर बोटिंग के लिए और घूमने जाते हैं। समरलैंड और पिचलैंड के आसपास के इलाकों में लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए गए और ओकानागन रीजन में इससे पहले वाइल्ड फायर 3 साल पहले लगी थी। ये मैकडॉगल क्रीक वाइल्ड फायर थी, जिसकी वजह से 35,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई थी। इस पर काबू पाने में करीब 1 महीने का वक्त लगा था। इसमें 14,000 हेक्टेयर एरिया जल गया था और यही सबसे चिंताजनक है, क्योंकि इस आग ने कुछ ही दिनों में लगभग उतना ही एरिया जला दिया है जितना पिछली आग ने करीब 1 महीने में जलाया था। इसको लेकर अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं।
0: वैसे इस तरह की आपदाएं बढ़ रही हैं, मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, वातावरण पहले से ज्यादा गर्म हो रहा है, सूखा हो रहा है, और इसकी वजह से कुछ फसलों की पैदावार में भी कमी आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सनफ्लावर्स और खिल रहे हैं? ये जानने के लिए बीबीसी रिपोर्टर डेवी टबे पहुंची नॉरफॉक में मौजूद एक फार्म पर, जहां इस साल सनफ्लावर्स की अब तक की सबसे अच्छी फसल हुई है।

0: एकड़ के इस खेत में सनफ्लावर्स की संख्या पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
1: सनफ्लावर जब बढ़ रहे होते हैं और उनमें फूल आने वाले होते हैं तो वो सूरज की तरफ घूम जाते हैं, लेकिन जब फूल पूरी तरह खिल जाता है तो वो पूर्व दिशा की ओर रहते हैं। इस वजह से जब लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि ये गलत दिशा में है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूर्व की तरफ ही रहते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सबसे ज्यादा धूप मिलती है। आप जब यहाँ आते हैं और पीछे मुड़कर सभी सनफ्लावर्स को एक साथ देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है।
0: इस किस्म के फूल शायद थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इनमें पैदावार ज्यादा होती है, फसल अच्छी होती है और घूमना भी खूबसूरत लगता है।
1: सनफ्लावर के साथ यहाँ आपको कई तरह की वाइल्ड लाइफ भी दिखती हैं, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी। इस कारण ये हमारे लिए एक शानदार मौका है। हम इसे एक फसल के रूप में उगाते हैं, लेकिन दो हफ्तों के लिए इसे लोगों के लिए खोलना ताकि वो आकर इसे देख सकें बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों से खेती के बारे में भी बात कर सकते हैं।
0: जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये छोटे किस्म के सनफ्लावर है। इन्हें लगाने के बाद से अब तक सिर्फ 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर थोड़ी और बारिश हुई होती तो ये एक फुट और ऊंचे होते।
2: फसल को अच्छी तरह बढ़ने के लिए कई दिनों की अच्छी खासी गर्मी चाहिए। इस कारण पिछले कुछ समय से जो गर्म मौसम रहा है उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बारिश भी जरूरी है।
0: यहाँ आप $7 में खुद 5 सनफ्लावर के फूल ले सकते हैं। जो सनफ्लावर बच जाएंगे उससे पक्षियों का दाना बनाया जाएगा और बेचा जाएगा।
2: आखिर में पक्षियों के दाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बीज और वो बीज जो लोग घर ले जाते हैं उनमें हमें लगभग कोई अंतर नहीं दिखा।
3: मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जगह इतनी बड़ी होगी।
4: इन्हें लगा कि ये सनफ्लावर्स का कोई छोटा सा खेत होगा, लेकिन जब हम पार्किंग में पहुँचे तो ये लोग फार्म देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ सनफ्लावर ही सनफ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ये शानदार है।
5: ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल वेदर, और इन सुंदर सनफ्लावर्स को देखिए।
0: इन सनफ्लावर्स ने सबका ध्यान खींचा है। जैसा कि यहाँ लोग कहते हैं, ये खुशी देने वाले फूल हैं। इन फूलों को देखकर कोई भी उदास होकर नहीं जाता। बीबीसी संवाददाता डेबी टबी की रिपोर्ट।
6: और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @bbcsarika। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। फिर
7: एक बार फिर तो स्वागत है जी। तो आई होप तुम खबरों के काफ़ी इनफॉर्मेशन सुन ली। प्रोग्राम अगे वध्या तुम सोच रहे हो मैं कही जाना भी साढ़े गैसट आ चुके ने, गैसट आ चुके ने, तो गैसट काफ़ी देर दे पहुँच चुके ने स्टूडियो च। उन्होंने आप गलबात करनी है तो एक छोटी जी ब्रेक लैके फिर ब्रेक तो बाद उन्होंने गलबात शुरू कर जा रहे हैं। सबरंग रेडियो 94.7 FM जरा कि मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 7 to 8 तो संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुन दो।
8: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-02

0: सिटी हॉल में इंडियन इंडिपेंडेंस डे के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये फेस्टिवल होता था और हम इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाते थे तो बहुत सारे कैलगरियन जो है वो आके पूछते थे कि भाई क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो। तो हमने सोचा कि यार हमने ये जो मौका है जहां पे ये हमारे कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, ये कल्चरल एक्सचेंज का बहुत ही बढ़िया मौका है
1: जी जी,
0: राइट, कि हम हमारे भारत के बारे में जो आम कैलगरियन है उसके साथ काफी कुछ शेयर कर सकते हैं। तो उसमें हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, हमारा खान पान हो गया, हमारे जो परफॉर्मेंसेस में जो कपड़े पहनते हैं हम, जो अलग अलग रंग के विविधता के, वो हम दिखा पाएंगे। तो हमने सोचा कि यार इसको एक फेस्टिवल का स्वरूप दे देते हैं, और इसीलिए पिछले 3 साल से इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के जगह पे हमने इंडिया फेस्ट शुरू किया और उसको एक और बड़ी जगह पे लेके गए, सिटी हॉल से लॉट 6 में, जो 5 times बिगर, यू नो, मोर क्राउड, फूड ट्रक्स होंगे, बहुत सारे स्पॉन्सर्स होंगे जो अपना संदेश पहुंचाएंगे, आर्टिजन स्टॉल्स होंगे जो इंडिया का जो आर्टवर्क है उसको वहां पे रखेंगे और लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का स्वरूप है, और हर साल की तरह इस साल भी वो 15 अगस्त को होगा, लॉट 6 में होगा, और बस यही है।
1: बहुत अच्छा, ये तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि और आप बिल्कुल बैठे भी मध्य भारत में हैं, और ठीक है जी क्यों जी, पंजाब से हरियाणा फिर मध्य प्रदेश थोड़े कोने में चले गए जी। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है जी इस बार इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, जेड़ा पहले ना भी वधिया होएगा, क्योंकि रोहन जी ने काफी एक्सप्लेन करके डिटेल में बता दिया भी इतना अच्छा होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट किसकी तरफ जी माइक जाएगा, हमारे भाई साहब जो मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं, पंजाब ते हरियाणा ही यारी तुहानू पता भी सब तो मशहूर हुंदी है जी।
2: जी पहले तो सब ने भाई राम राम, आज मैं आया हूँ हरियाणा की तरफ से तो हरियाणवी में भी थोड़ा सा यू नो तड़का लगाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: राइट। सो आप सब जानते हैं कि जो 15 अगस्त आ रहा है तो उसमें हम सभी भाग ले रहे हैं। तो अभी बात हो रही थी सब रंग की, जो इस सब रंग रेडियो पे आने के बाद पूरे रंग जो है इंडिया के यहाँ पे आए हुए हैं, हर कल्चर से, महाराष्ट्र से, सो मैं हरियाणा से, आप पंजाब से, हर तरह के कल्चर के बंदे हम यहाँ आए हुए हैं। सो जब भी राजेश जी को हम कहते हैं तो हमें टाइम देते हैं, हम आपका बहुत आभारी हैं। तो इस बार हमारा हरियाणा जो है हरियाणी सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ हरियाणवी कल्चर की तरफ से डांस वांस वगैरह होंगे, हमारे जो डांस रखा हुआ है, डांस प्रोग्राम है। सेम टाइम पे एक जो हरियाणवी पहरावा है उस पहरावा के साथ हम जाना इस बार हमारा प्लान हुआ है। तो तिरंगे की टाइप हम बन के जाएंगे, कपड़े कुर्ता पजामा सब डाल के, धोती वगैरह और पगड़ी वगैरह लगा के एक अच्छा माहौल बनाएंगे। तो वो सब रंग इकट्ठा ही करेंगे वहाँ पे।
1: वेरी गुड,
2: बड़ा ये अच्छा। हमारा इस बार गोल है कि हरियाणा को प्रमोट किया जाए वहाँ पे भी। तो 15 अगस्त हम इंडिया में जो छोटे होते थे स्पेशल जाते थे, जब झंडा लहराते थे तो वहाँ पे जाना था, यहाँ मौका नहीं मिलता था। तो रोहन जी ने जैसे बताया कि ये 6 साल पहले स्टार्ट किया, तो एक अच्छा लग रहा है कि अपने इस कंट्री में भी, आई बीन लिविंग इन फॉर लास्ट 30 ईयर्स, पर ये चीजें जो देख के ना अच्छा लगता है कि हमें वो इंडिया वाला जो मिस करते थे हमें यहाँ मिलने लग गया। तो मैं हरियाणा वालों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई सुन लग रहा है 15 अगस्त ने हर हालत में आओड़े, और आपने पगड़ी लेनी अपने में पगड़ी भी, या पगड़ी बांधना गे सबने, तो मस्ती मारो वहां पे। मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, हिंदी बता दे, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज आप वहां आए। और उस दिन का जो है फेस पेंट के लिए कोई जिक्र कर रहा था कि फेस पेंट भी है, एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, थोड़ी हट गया है
1: जी जी।
2: लास्ट टाइम हम इनके पास जब आए थे राजेश जी ने हमें मौका दिया था रेस्टोरेंट के लिए, मैं उनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका जो मैसेज वहां जाने से हमें जो वहां पे इतना भरपूर जो वहां रिस्पॉन्स मिला है वो आपके हम बहुत आभारी है।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी जी आप करते हो, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए हरियाणा से निकलना पड़ता है, तो इसलिए है नी, तो दिल्ली तब तक दूर है जब तक हरियाणा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए पंजाब है नी, पंजाब का
2: हरियाणा वालों से दोस्ती रखनी पड़ेगी
1: हाँ जी
3: दिल्ली आने तो।
1: जी जी जी शशांक जी आप, क्योंकि शशांक जी जो है ये इंडियन YYC जो इस बार के क्योंकि मेन कर्ता धर्ता इस ऑर्गेनाइजेशन को, हर बार ये किसी ना किसी को चांस देते हैं, अभी 21 या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इस बार इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अभी गौरव जी भी आए थे तो इन्होंने इस बार ज्यादा अपने मोडे पे जिसको कहते हैं पंजाबी च पार चुके हैं, बट बाकी सारे के साथ में जी।
4: सबको नमस्कार, मेरी जय महाकाल, मैं शशांक श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर इंडियन एंड YYC। और जैसे कि बताया सर ने कि हर साल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का मौका मिलता है, इस

0: ब्यूटीफुल फेस्ट के लिए। तो इस साल जो है इंडियन एंड बायवेसी को मौका मिला है और हम लोग ने पूरी कोशिश करी है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए सारे प्लान जो हैं, और जिस तरह से इसका एक जो स्टैंडर्ड सेट हो चुका है उसको हर साल ऊपर ही उसको किया जाए डे बाय डे। और उसके लिए काफ़ी सारे चीज हम वहाँ पे करते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रहता है, फूड ट्रक्स में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें इंडियन फूड और स्नैक्स आइटम्स और काफ़ी कुछ मिलता है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें अपना बूथ लगाते हैं, वहाँ पे अपना वो कल्चर जो है वो अपना दिखाते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को कि जहाँ पे आप आके अपने बैक होम की सारी चीजें आप रिमाइंड कर सकते हैं कि बैक होम में हम जैसे सेलिब्रेट करते थे अपना स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, और उसी को यहाँ पे लाने की कोशिश है सारी। और भी बहुत कुछ है, तो आइएगा अगस्त 15 को 11 से 4 बजे का इवेंट है लॉट 6 में 8th स्ट्रीट डाउनटाउन में। थैंक यू
1: वेरी मच शांग जी। और मुझे याद आता है भी जब पता नहीं आप लोग उस टाइम पे गए थे कि नहीं, आठ साल पहले की बात है, तो जब उस टाइम पे मैंने ऑर्गेनाइज किया था ये अपने सिटी हॉल के बाहर प्रोग्राम, तो वो फर्स्ट टाइम था इतने ज्यादा लोग आए थे। उससे पहले हम लोग करते थे बट उतने लोग नहीं इकट्ठे होते थे क्योंकि ये जो इंडियन एसोसिएशन है हमारी उसकी तरफ से होता था, बट उस टाइम पे लोगों में इतना प्यार या कह लो भी इतने ज्यादा नहीं थे। अब स्लोली स्लोली करके काफी कम्युनिटी भी बढ़ गई और ज्यादा लोग भी आने लगे हैं, तो बड़ा अच्छा। मेरे पास वो पिक्चरें फोटो में जब देखता हूँ तो उसके बाद उस टाइम पे भी थोड़ी गड़बड़ सी हो गई थी हमारी, तो बट ये अच्छा है भी हम सब अब मिलके कर रहे हैं और बड़ा अच्छा। रोहन जी ने जैसे बताया भी पिछले 6 सालों से आप बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और सारी चीजों को अपने ध्यान से देखते हैं, तो यही हमें चाहिए होता भी हम इसको एक इंडिया की आन शान लेके चलें, क्योंकि इट्स नॉट ओनली जस्ट कोई एक इवेंट नहीं है, हमें इसमें अच्छा मैसेज तो देना ही देना बट अच्छा इवेंट करके भी दिखाना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि वहां पे जो भी हमारे दोस्त आए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भी आप आओ, और आने के साथ में इतने अच्छे तरीके से वहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, जल्दी हफड़ा दफड़ी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा लगना चाहिए प्रोग्राम, ताकि हम लोग सारे एवरी ईयर जब प्रोग्राम हो तो हम कहें भी यार क्या प्रोग्राम किया था हमने।
0: और अपने बच्चों को जरूर लेके आए क्योंकि वो उनको सीखने को मिलेगा कि क्या हमारा कल्चर है
1: बिल्कुल,
0: और कैसे हम इंडिया का ये सारा चीज सेलिब्रेट करते हैं।
1: बिल्कुल जी, तो अभी प्रशांत जी कह रहे होंगे मैं बड़ी देर से बैठा हूँ मेरी बात नहीं कर रहे। जी प्रशांत जी, आप मध्य प्रदेश हैं बट आप ज्यादा आप कन्याकुमारी की तरफ चले गए।
3: कोई बात नहीं जी, सब लोगों को मैं एसोसिएशन से प्रशांत शुक्ला,
1: ये ए रेडियो वाले, हाँ जी ठीक है, इस पे भी हाँ जी
3: पहली बार मध्य प्रदेश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और काफी उत्साहित है हम लोग, काफी लोगों को काफी नए लोगों से मिलना हुआ, काफी लोगों से सीखना हुआ। आप सब लोगों से अनुरोध है कि सब लोग आए और इस पावन पर्व को स्वतंत्रता दिवस को काफी उत्साह पूर्वक हम लोग मनाएंगे, करीब 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है। और मैं स्पॉन्सर्स को भी सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है, स्पेशली वाईवाईसी होम केयर जो हमारे एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर हैं,
1: माइक के भी रेडियो वाले के भी पास।
3: उसके अलावा हमारे प्लेटिनम स्पॉन्सर आरबीसी और रियल्टर सलील महाजन, इसके अलावा भी कई लोग हैं गोल्ड स्पॉन्सर सिल्वर, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फूड ट्रक आर्टिशियन स्टॉल को सबको, क्योंकि उनके सहयोग से इस इवेंट को हम सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो मेरा यही सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग आए और एक बढ़िया इवेंट करेंगे सब लोग, सब मिलकर। थैंक यू
1: जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। तो ये साड़ी टीम सी जी इस बारी प्रोग्राम दे विच वध चढ़ के, वैसे ये एक छोटा रोल है टीम है बट वड्डी टीम बिगर टीम इज देयर, क्योंकि पूरियां 21 ऑर्गेनाइजेशन है
4: जी, तो कुल मिला के हमारी 20 ऑर्गेनाइजेशन है
1: जी।
4: और यही कहना चाहूंगा कि ये भारत की जो विविधता में एकता जो हम कहते हैं
1: जी जी जी, अनेकता में एकता,
4: जी विविधता में या अनेकता में एकता,
1: हाँ जी,
4: तो ये उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि पिछले 6 साल से हम सारे एक साथ है, हर साल नए नए ऑर्गेनाइजेशन जैसे हरियाणवी हो गई या मध्य प्रदेश हो गया या हमारे साथ जुड़ रहे, और बस उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कैलगरी में है
1: जी,
4: वो सारी इकट्ठा होकर भारत

0: को सेलिब्रेट करे. हमने कई सारी चीजें इसमें रखी हुई है और कुछ चीजों पे हमने अभी बात की. फूड ट्रक्स की मैं बात करूं तो हमारे साथ गुरु इंडिया है, मुंबई बाइट्स है, स्नैक हट है और ऑनेस्ट रेस्टोरेंट्स वाले हैं. तो इन सभी की वजह से जो हमारा इवेंट है वो फ्लेवरफुल भी बन रहा है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये कुछ चीजें हैं. अलग से हम क्या कर रहे हैं इस साल की, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि यू नो अचानक से कोई इवेंट पे आ जाता है और कहता है कि तुमने यहां गंदगी फैलाई, वहां गंदगी फैलाई, तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो. तो ऐसी बात नहीं है. हमारी कोशिश तो ये रही थी कि इवेंट खत्म होते होते सब कुछ साफ सुथरा लगे, लेकिन उससे भी हम कुछ सीखते हैं. तो इस साल हमने और एक यूनिक चीज की है और ये हमारे आने वाले सभी लोगों के लिए काम आएगी कि हमने एक संस्था है उनके साथ टाई अप किया है और वो जो भी गार्बेज होगा उसको ऑन द स्पॉट सेग्रीगेट करेंगे बिटवीन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड मिक्स, करेक्ट, एंड रिसाइक्लेबल. तो उसको सेग्रीगेट करेंगे और साथ ही में लोगों को भी सिखाएंगे कि ये इसमें जाना चाहिए. तो ये एक काइंड ऑफ सिटी को थोड़ी सी हमारी तरफ से हेल्प होगी कि लोगों को वो ज्ञान भी हम मिल रहा है कि ये तरफ से काम हो रहा है.
1: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा है. क्योंकि यही जब तक कहते हैं ना भी हमारी जो हिंदी है ना वो अनेकता एकता तक ही होती है, विविधता वाली कम होती है. बट ये अच्छा है कि आपने ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं तो लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलेगी आई थिंक भी. हाँ जी, कभी आगे आने वाले टाइम में भी सब लोग इसी तरीके से काम कर पाएंगे. तो यही हमें चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं जो भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, स्पेशली कम्युनिटी इवेंट्स हैं तो उसको, और करते तो सारे अच्छे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं मैंने देखा भी हर टीम, बट फिर भी किसी ना कुछ कई बार गड़बड़ होती है तो उसमें हमारा नाम बदनाम होता है. बट इस बार इन्होंने कहा भी जो हमारी मेन जो प्रॉब्लम वो यही दिखाते हैं लोग कि हम लोग गार्बेज की टेक केयर नहीं करते. एक बार अब हमने देख लिया, अब आई थिंक इसके आगे सब ठीक ही रहेगा.
0: जी
1: जी. और हमारे पास दो चार मिनट बचे हैं क्योंकि जी कुछ इसमें कुछ शेयर करना चाहिए.
0: जी बिल्कुल. तो कुछ चीजें और है कि सबसे पहले तो आप सभी को हम न्योता दे रहे हैं कि आप आए.
1: जी जी.
0: पर साथ ही में अगर आपने आज का रेडियो प्रोग्राम सुना और आपको इस बात की जानकारी मिली है तो अपने सारे दोस्तों से, परिवारजनों से और खास करके जो भारतीय नहीं है
1: जी जी
0: उनको भी बताइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है उनको लाने का, उनको दिखाने का कि हम कैसे काम करते हैं, हमारे विविधता में एकता कैसी होती है, हमारे कल्चर कैसे है. ये एक बात हो गई. दूसरी बात, आपको कल से सारे ट्रेन स्टेशन पे भी उसके पोस्टर्स दिखेंगे.
1: जी जी.
0: आपको बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स में पोस्टर्स दिखेंगे, तो जब भी आप उसको देखो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हमारी वेबसाइट है indiafest.ca, हमारा फेसबुक पेज भी है, हम इंस्टाग्राम पे है, तो हमें फॉलो कीजिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी. बट वंस अगेन पूरी इंडिया टीम के, इंडिया फेस्ट के टीम की तरफ से मैं रोहन संघे रिप्रेजेंटिंग सीए में आपको इनवाइट करता हूँ, जरूर आइए, सारे जनरेशन को लेके आइए.
1: बिल्कुल जी. तो थोड़ा क्विकली जी जी,
2: रोहन जी ने तो कवर तो कर दिया. मैं भी हरियाणा वालों को दोबारा इनवाइट करने लग रहा हूँ. भाई जो भी सुनने लग रहा है, हर हालत में पहुंचना अपने अपने जो ये 15 अगस्त का इवेंट है, और मिलजुल के सबने तिरंगा उस दिन जो फहराना अपने, तो सबने वहां पे सलूट करना है. इंडिया का जो है ना तिरंगा, तो उस दिन वहां सलूट करना है. तो सभी से रिक्वेस्ट यही है कि भाई सब आयो, हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से, हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से, हरियाणा सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से, आई एम सो सॉरी संजीव नागपाल एज ए प्रेजिडेंट, मैं आपको सबको इन्वाइट करता हूँ. थैंक यू.
1: बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा जी.
3: जस्ट वॉन्टेड टू एड वन थिंग, सो इट्स अ फ्री इवेंट, मतलब इसका कोई टिकट नहीं है और कोई भी चीजें नहीं है. कोशिश करिएगा कि थोड़ा पार्किंग का इशू रहता है, तो जितना ज्यादा से सी ट्रेन यूज कर सकें वो सबसे बेस्ट है.
0: yes.
3: इससे हमें भी क्राउड मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, और जैसे रोहन जी ने अपडेट किया, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ गार्बेज एंड एवरीथिंग, सो वहां भी कोऑपरेट करिएगा. एंड या फ्री इवेंट है, फैमिली के साथ आइए, अपने लोकल अटायर में आइए.
0: पार्किंग के लिए वेबसाइट पे हाउ टू गेट देयर में सारे पार्किंग लिस्टेड है.
3: जैसा आपने सुना कि आप वहां पे अपना पार्किंग स्पॉट देख सकते हैं, और आप एज पर अगर अवेलेबल है तो वहां पे बिल्कुल पार्क करें. मैं शशांक श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड फॉर इंडियन एनवायरनमेंट, आप सबको इनवाइट करता हूं, प्लीज आइएगा.
1: बिल्कुल जी. तो प्रोग्राम का समय भी समाप्त हो गया. तो और जी प्रशांत जी कुछ बोलना चाहेंगे,
2: आपके पास एक मिनट है.
4: मैं सभी मध्य प्रदेश वासियों को बोलना चाहूंगा कि हम सबको आना चाहिए. हम लोग पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जहां भी कैलगरी में रहते हैं प्लीज आने का कष्ट करें.
1: बिल्कुल. तो ये आज

0: साल हो गया गाना सुनती हूँ। बस कैलगरी च कार लैंड दी फीलिंग आई ले जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होने दा मन बना लिया है। उन्हां दे आउण तो पहला मेनू घर चाहिदा है।
1: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुण घर एक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ढिल्लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है।
0: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए।
5: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उन्हां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
4: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
6: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।
7: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी पंजाब इंश्योरेंस तों हरपिंदर सिद्धू अते लवप्रीत सिद्धू ने, जिहड़े कि कैलगरी दे विच लंबे समें तों इंश्योरेंस दीआं सेवावां दे रहे ने। जेकर तुसी लाइफ इंश्योरेंस करवानी है जां सुपर वीजा इंश्योरेंस करवाउणा चाहुंदे हो ते 403-404-3500 ते इन्हां नूं कॉल कर सकदे हो पंजाब इंश्योरेंस। पिक्सल फोटो स्टूडियो ने इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी जी, जिहड़े कि सवाना बाजार दे विच ने, ते इन्हां दा सुनेहा है कि ए पासपोर्ट साइज फोटो सिर्फ $7 दे विच बना के दिंदे ने। इस तों इलावा जेकर तुसी फैमिली फोटोज़ बनाउणियां ने जां बच्चियां दीआं फोटोज़ करवाउणा चाहुंदे हो, पोर्ट्रेट्स बनाउणा चाहुंदे हो, तां इन्हां नूं कॉल कर सकदे हो 4039470060 ते पिक्सल फोटो स्टूडियो। प्रोग्राम दे अगले स्पॉन्सर ने जी मदर इंडिया रेस्टोरेंट, जिथे तुसी नॉर्थ ते साउथ इंडियन फूड दा लुत्फ उठा सकदे हो। तवे वाली टिक्की खाण नूं दिल करे ते भावें दिल करे डोसा खाण नूं, ते जे दिल करे चाट खाण नूं ते इत्थे चाट दे लाइव काउंटर्स भी ने, ते नाल ही स्पेशल मालपूड़े भी मिलदे ने, खीर अते गुलगुले हर शनिवार अते एतवार मिलदे ने। ब्रेकफास्ट बफे दे विच सवेरे 10 बजे तो लैके शाम दे 4 बजे तक तुसी एंजॉय कर सकदे हो 40+ डिलीशियस आइटम्स, नॉट 14 इट्स 40 40 मेहमाना तक लई प्राइवेट डाइनिंग भी अवेलेबल है 24/7 24 घंटे खुले हुंदे ने। इह सब तो खास गल है सिटीस्केप लैंडिंग प्लाजा दे विच लोकेटेड ने। इन्हां दा फोन नंबर 403-936-7777 है जी। मदर इंडिया रेस्टोरेंट, मां दे हत्थां वर्गा स्वाद।

0: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: अपने घर का दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदने तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
2: सिर्फ घर खरीदने ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदने ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
0: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਇਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ। ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696। ਓਇਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदन ले हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कनरिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835-2222।

0: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
1: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग लई कहूंगा। कौन इन्ने भारे समान नूं हथ पावे।
0: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा। ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
2: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो। 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।